मिलन गीते इतामत जनप्रियुन चित्रपट एक गीते गायनकरानी मोहम्मद राफी में गीते अथलतुना गीत चित्रपट एट गीत चित्रपट इतामत में जनप्रियुन चित्रपट एक लोपुराम सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम द फिल्म गीत दस पर डॉयट लीड सो 1976 लीप डीसम फिल्म इन बॉलीवुड उन आइने फैमिलियन ड्रामा हाट डीसम फिल्म अलस गेसिस्टे गेहाट राजेंद्र कुमार उन Mala Singh spielt diesen Film und Kalyananji Anandji hat Musik dirigiert. So Kalyananji Anandji ge Sangeeten rasavat tuna me chitrapate ena me geete gayane karanne Gul Saxena samaga Jyothira Ilyam.